0: नमस्कार, मी प्रमोद पुराणिक, गुंतवणूक सल्लागार. रेडिओ विश्वासच्या सहकार्याने आपण गेली अनेक वर्ष नाशिक परिसरामध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. आणि त्या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी दुपारी 12:30 आणि रात्री 8:30 विश्वास रेडिओवरती आपण हे प्रक्षेपण करत असतो. आणि या प्रक्षेपणाचा हेतू रेडिओ विश्वासच्या श्रोत्यांना, नाशिक परिसरातल्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीविषयी आर्थिक साक्षरता निर्माण होऊन त्यांनी गुंतवणुकीचे चांगले निर्णय घ्यावे आणि त्यातून आपली आर्थिक प्रगती करावी. मधुर लोनावट मॅडम नमस्ते, मैं रेडिओ विश्वास के तरफ से आपका नासिक में स्वागत करता हूँ. और हमारा जो कम्युनिटी रेडिओ है वो हर एक मंगलवार के दिन 10 मिनट के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस का प्रोग्राम दोपहर को 12:30 और रात को 8:30 होता है. तो आज आप हमारे लिए, हमारे नासिक के निवेशकों के लिए, और आप जो नई स्कीम लेके आए उसके बारे में, और आपकी AMC नहीं है तो उनके बारे में हमारे नासिक के निवेशक, रेडियो विश्वास के जो श्रोता है उनके लिए, और नासिक के जो अलग अलग इन्वेस्टर है उनके लिए आप ये 10 मिनट का अच्छा तरह यूज़ कर सकते हैं.
1: जी जी, बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. सो आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम मधु लोनावत है. मैं बाई क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और वैसे राजस्थान से हूँ बट बॉर्न ब्रॉट अप गुवाहाटी आसाम से हैं हम. और मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में नौकरी की पहले, और नौकरी करने के बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया 2014 से. सो हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल्टरनेट एसेट एडवाइजरी, यू नो, उन सब में हैं हम लोग. और हमने रिसेंटली दीना मैम, जो BSC की महिला, पहली महिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनकी का सारे बिजनेसेस भी हमने एक्वायर किए. एंड सो बात करते हैं AMC में. सो AMC लाइसेंस हमें सर पिछले साल मिला, एंड विच इज़ वेयर मैं भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने AMC लाइसेंस हासिल किया. तो बात करते हैं ये जो अभी NFO आ रहा है सर, ये अपना मल्टी एसेट NFO है, जहाँ पे जैसा आप देखते हैं कि जहाँ पे मल्टी एसेट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों कैप्स में हम इन्वेस्ट करते हैं. लार्ज कैप 25%, मिड कैप 25% और स्मॉल कैप. तो एक एसेट एलोकेशन की जो हम बात करते हैं, मल्टी कैप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको तीनों कैप में डाइवर्सिफिकेशन देता है, और प्लस फंड मैनेजर के पास कुछ परसेंटेज और रहते हैं, ये 75%, 25% प्लस 25% का और उसके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि जहां भी उसको अच्छा लगे, जिस कैप में भी उसको अपॉर्चुनिटी लगे वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो लगा सकता है. सो ये अपना NFO अभी 27 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 10 सितंबर को फिनिश होगा. दूसरी बात करते हैं नासिक की. सो नासिक एक बहुत ही प्यारी सिटी है सर, और हमेशा जब भी आती हूँ बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिला है. तो आज हमने एक बहुत बढ़िया, नासिक के लिए फर्स्ट टाइम हुआ था, हमने यहाँ के फीमेल्स के लिए, फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो फीमेल नई MFDs बनना चाहती हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में आना चाहती हैं, उनके लिए हमने आज एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया कि उनको कैसे बिजनेस में आना चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ कैसे करनी चाहिए, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए. उसके बाद शाम को भी हमने नासिक के जो प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ा और प्रोग्राम किया, जहाँ पे हमने ये बात की कि सर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा धर्म क्या है. हमारा धर्म है इन्वेस्टरों का वेल्थ क्रिएट किया जाए, राइट. इन्वेस्टरों का वेल्थ क्रिएट करने के लिए 3-4 इजी चीजें बात करते हैं. पहला तो इन्वेस्टर के लिए मेरा एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा आप सभी इन्वेस्टरों को, कि आपको फोकस करना चाहिए पैसा कमाने में, और पैसा जो आपका पैसा है उसको मैनेज करने की जो जिम्मेवारी है वो आपके जो लोकल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे आप छोड़ दें अपनी ये जिम्मेवारी, नंबर वन. नंबर टू, जब भी आप म्यूचुअल फंड बिजनेस में आते हैं तो मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि मधु LIC क्यों नहीं, ये मधु FD क्यों नहीं. बट अगर सर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बात करो और आप लास्ट 60 ईयर्स की हिस्ट्री देखो, राइट, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने करोड़ों लोगों को वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प, मदद की है. डेफिनेटली म्यूचुअल फंड बिकॉज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, उतार चढ़ाव बिल्कुल आएंगे, बट उतार चढ़ाव अगर नहीं होगा सर तो वेल्थ क्रिएट होने वाली नहीं है. तो जब हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि यार इसने रिटर्न अच्छा बना लिया, इसने वेल्थ अच्छा बना लिया, बट ये पीछे लोग ये नहीं सोचते कि उस आदमी या औरत ने 12 से 15 साल अपने एसेट पे टॉप अप किया है, अपने एसेट को कंटिन्यू रखा है और रोज रोज उसको रिडेम्पशन नहीं मारा है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम सबकी सर बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हमने एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं सर्व इच्छा पूर्ति। तो आपके कोई भी इन्वेस्टर की जितनी भी इच्छाएं हैं, 10 इच्छाएं हैं, 5 इच्छाएं, आप प्लीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और उनसे अपनी इच्छाओं के बारे में बताइए और आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका एसेट एलोकेशन करेगा आपके एज के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और उसके बाद हर इच्छा के साथ वो एक लमसम और एसआईपी करेगा। और लेट मी टेल यू, म्यूचुअल फंड के अलावा देर इज नो अदर इंस्ट्रूमेंट जो आप बढ़िया से आपके सारे जो गोल्स है, आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सके। एंड ये बहुत ये सभी यू नो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप देखोगे जब हम टियर 3 टियर 4 में बात करते हैं तो वहाँ पे चिट फंड हो गया, हुंडी हो गया, ऐसे से बहुत सारे यू नो मिस नॉमर्स है कि लोग सोचते हैं हमें वहाँ पैसे लगाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप ये मत देखिए कि यू नो मार्केट रिस्क है इसमें, डेफिनेटली मार्केट रिस्क है, बट मार्केट रिस्क के साथ साथ रिटर्न पोटेंशियल भी इसी इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा है। तो आप FD और बाकी तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट ना करके इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, और जहां पे आप देखोगे लॉन्ग टर्म में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन भी करें तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। एक 10,000 की SIP 15 साल में सर लगभग 85 लाख से 1 करोड़ बन सकती है। और मैं सबको मेरे मम्मी का एग्जाम्पल देती हूँ सर। मेरे मम्मी बिलोंग करते थे लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, तो हमने कभी SIPs के बारे में ना सुना था, पैसे भी नहीं थे। तो अब जब से मुझे समझ में आई, मैंने मेरी मम्मी की SIP करवाई और अभी कॉर्पस बनाया, और आज उनको SWP करवाती हूँ जिससे उनको हर महीने 40,000 मिलते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको अपनी बेटी या बेटे किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड के अच्छा कोई तरीका नहीं है। और इस वजह से मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कीजिए, और समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। प्रॉब्लम क्या है सर, हम इन्वेस्ट करते हैं और 1-2 साल में हम बोलते हैं रिटर्न नहीं आया, 2 साल में 2.5 साल में रिटर्न नहीं आया। सर रिटर्न बिल्कुल आएगा, बट उस इन्वेस्टमेंट को आप एटलीस्ट 10 से 15 साल दीजिए।
0: नासिक में अभी भी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं, वो फाइनेंशियल एसेट के बदले लैंड, रियल एस्टेट, शॉप्स, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनको म्यूचुअल फंड में आने लाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: तो इसमें हमें जो हम एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो पुरानी सर आप इतना करते रहते हैं, राइट, वो इन्वेस्टर प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम ये सब बातें खुल के डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। आप रियल एस्टेट का लास्ट 100 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि जो चीज जैसे रियल एस्टेट है तो हम उसको 3 जनरेशन तक बेचना नहीं चाहते। गोल्ड ज्वेलरी जो हमें कोई ब्याज नहीं देती वो हम लॉकर में जमा करके रख, बट यही चीज जब म्यूचुअल फंड पे आते हैं सर तो हम म्यूचुअल फंड में सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें डेटा पे जाना चाहिए, और लास्ट आप 60 इयर्स का डेटा उठा के देखिए, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, या चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, म्यूचुअल फंड ने हमेशा बढ़िया से अच्छा, इन सब से कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न दिया है। और उसी से लोगों का आज जैसे हम प्रोग्राम में सर बात कर रहे थे कि एक MFD ने 100 लोगों को करोड़पति बनाया, आपने कितने को बनाया है?
0: मैं तो पूरे नासिक को बनाया,
1: बताइए सारे नासिक को आप 40 साल से करोड़पति बना रहे हो आप, राइट। तो इससे बड़ा सर हमें तो देखना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए कि हमारे से पहले जो लोग कर चुके हैं, हमें क्यों उस चीज को ना वापस से री इन्वेंट करना है। तो सर ये क्या ये साइकोलॉजिकल इशू है जिसमें हमें लगता है कि लैंड हमें दिख रहा है तो वो उसकी वो मतलब वो सेफ एसेट है, राइट। हमें गोल्ड दिख रहा है तो हम गोल्ड में दिन रात इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो मैं इसलिए इन दोनों में इन्वेस्ट ना करके। और हमने ये देखा है सर जो जेंजी हैं, जो नए लोग हैं, वो लोग में लैंड और गोल्ड के प्रति उनकी रुझान कम हो रहा है, और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड और बाकी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करने लग गए। तो सर गोल्ड की जब हम बात कर रहे थे, एक मैं आपको बताती हूँ भारत ये है आपकी जो महिलाएं श्रोता हैं उनके लिए पॉइंट है कि महिलाएं ज्वेलर्स के यहाँ जाके सर SIP करती हैं, राइट। उनकी जो पास स्कीम होती है ज्वेलर्स इन्वेस्टमेंट स्कीम, वहाँ इन्वेस्ट करती है। और सर उसमें आप सोचिए, उसमें आपको नंबर वन इसलिए कर पाती है क्योंकि वो ज्वेलर के यहाँ जाके उनको ये होता है कि आप ज्वेलरी खरीद सकती हैं। बट सर यही चीज आप गोल्ड FOF में जब आप करते हो, आपको प्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। एंड नंबर 3, जब आपको क्यों एक साल बाद ज्वेलरी लेनी है जहाँ पे इतनी सारी मेकिंग चार्जेस है, आप उसको इन्वेस्टमेंट तरीके से कीजिए। सर पुराने जमाने में होता था कि हम ना ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं, वेयरिंग ज्वेलरी अलग होती थी, इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी अलग होती थी, इन्वेस्टमेंट के लिए हम हमेशा बार्स या कॉइन्स यूज करते थे। आज क्या है वो भ्रम हो गया लोगों को कि ज्वेलरी जो हम पहनते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। लोगों को पता नहीं कि 25-30% तो उसमें प्योरिटी नहीं होती, फिर मेकिंग चार्जेस इतने होते हैं, राइट। तो आप देखोगे हमने क्या किया, गोल्ड पासबुक निकाला है सर, जहाँ पे उनको ग्राम्स दिखते हैं। सो आपके चैनल के थ्रू मैं श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगी कि गोल्ड FOF में SIP करें वो।
0: जरूर जरूर। और हमारे निवेशकों के लिए हमारे तरफ से ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि जब भी आप नासिक आएंगे तब हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और ये इंडस्ट्री में जो चेंजेस हो रहे, नए नए स्कीम आ रहे, अभी एक लाइफ साइकिल फंड लेके आ रहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो इसमें अगर हमेशा आप अच्छी तरह से हमें कुछ ज्ञान देंगे हमारे नासिक के लोगों के लिए, तो नासिक में म्यूचुअल फंड का निवेश और बढ़ सकता है। आपने इतना व्यस्त समय होते हुए भी रेडियो विश्वास के लिए आपने ये टाइम दिया, उसके लिए रेडियो विश्वास और नासिक के जो निवेशक है उनके तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि जब भी आप नासिक आएंगे कुछ फंक्शन के लिए तो रेडियो विश्वास के लिए आप थोड़ा बहुत समय निकालेंगे, ऐसे मनोकामना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
1: धन्यवाद।
2: नवीन सुरुवात नव्या स्वप्नांसाठी विधवा घटस्फोटी परित्यक्ता महिला आणि युवतींसाठी विश्वास बँकेची विशेष स्वरोजगार कर्ज योजना। साडी व्यवसाय, ब्युटी पार्लर, गृहउद्योग, हॉटेल व्यवसाय आणि इतर उद्योगांसाठी 25 लाखांपर्यंत कर्ज सुविधा। अधिक माहितीसाठी संपर्क प्रेमचंद तायडे 9604179861 किंवा गणेश सोमवंशी 8380016508। विश्वास बँक, तुमच्या यशाचा आधार।
3: आणि कार्यक्रमातलं हे गीत ऐकूयात वसंत पापट यांचं लता मंगेशकर आणि सहकाऱ्यांच्या स्वरात। गीताला संगीत दिलं आहे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी आणि हे गीत ऐकणार आहोत उंबरठा या चित्रपटामधलं।

0: दुपारचा 1 वाजलाय आणि तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: This hour is brought to you by
2: Sony Gifts, exclusive range of crockery, appliances and presentation articles. Sony Gifts, Shalimar.
1: This hour is brought to you by
3: Vishwas Cooperative Bank.
4: Sanchayat Samruddhi.
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
6: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही. त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा. रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज.
7: दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे कुछ खास गीत. दोस्तों, अफसाना नहीं, ये तो हकीकत है कि हम और आप एक ही नया के मुसाफिर है और इस सफर में बस सुर है, ताल है. दोस्तों, रेडियो विश्वास ने मिलाया यह मेल है. इन पुराने सुहाने भूले बिसरे गीतों का नजराना लेकर मैं आई हूँ आपके लिए. आपने ट्यून किया है 90.8. आज के प्रोग्राम में सुनेंगे हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार इंदिवर के लिखे हुए कुछ बेजोड़ नगमे.

दोस्त दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। ये बेजोड़ नगमा लिखा था इंदौर ने, जो भारत के प्रसिद्ध गीतकारों में से जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित बरुआ सागर कस्बे में हुआ। एक निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम श्यामलाल बाबू राय था। इनके बचपन में एक फक्कड़ बाबा से इनकी मुलाकात हुई, जो अच्छा गाते थे। इनके संपर्क में श्यामलाल माने इंदौर जी को गीत लिखने की रुचि जागृत हुई।

दिल पुकारा में अभी आपने फिल्म अनोखी रात का गीत सुना, लता मंगेशकर ने गाया था, संगीत से सजाया था रोशन ने, लिखा था इंदौर ने। दोस्तों इन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं आज के दिल पुकारा में। मैं हूं प्रांजलि, आपके साथ आपने ट्यून किया है 90.8। इंदौर के बाल सखा राम सेवक रिछारिया ने उन्हें राष्ट्रीय विचारधारा और सुधार की दृष्टि से साहित्य की ओर मोड़ा। वे उनकी रचनाओं को सुधारते रहे। एक बार कालपी के विद्यार्थी सम्मेलन में श्यामलाल ने मंच पर कविता पाठ किया तो श्रोताओं द्वारा उन्हें काफी सराहा गया और उन्हें बड़े कवियों की भांति विदाई के समय 51 रुपए की भेंट भी प्राप्त हुई। तब उन्होंने उन रुपयों में से 36 रुपयों में साइकिल खरीदी, सम्मेलन में जाने के योग्य अचकन और पजामा खरीदा। फिर भी जेब में काफी रुपए बच गए थे क्योंकि उन दिनों 1 रुपए की भी कीमत बहुत थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेते हुए उन्होंने श्यामलाल बाबू आजाद इस नाम से कई देशभक्ति गीत लिखे।

0: तुमने जवाब नहीं दिया।
1: यकीन नहीं आया
0: रेशमा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी में इतनी कमी का एहसास कभी नहीं हुआ। हाँ कह दो रेशमा, हाँ कह दो।

दोस्तों अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का गीत, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और ये गीत लिखा था इंदिवर जी ने। दोस्तों इन्हीं के जादू भरे गीत आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर, आपने ट्यून किया है 90.8। इंदिवर के गीत बड़े पसंद किए गए, धर्मात्मा, अनोखी रात, सरस्वती चंद्र, पारसमणि, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, सफर अमानुष, इन सारी फिल्मों के सारे ही गीत हम और आप जैसे संगीत प्रेमियों की दिल में बसे हैं। और भी एक फिल्म है जिसका नाम है दिल ने पुकारा। दोस्तों यही तो नाम है हमारे प्रोग्राम का।

0: बंद कर लूं, कहीं चल कहीं न जाए।
1: तो दोस्तों, इंसान को हंसाने के लिए, गम मिटाने के लिए इन गीतकार संगीतकारों का हमारे जीवन में जो योगदान है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। म्यूजिक इज अ पेन किलर, गमों की दवा है, दर्द पर मरहम है ये मौसिकी। तो चलिए सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे ये प्यारे से गीत, और अगले मंगलवार जरूर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल ने पुकारा। नमस्कार।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू

0: पैशांची गरज आहे तर इकडे तिकडे कशाला मागायचे? आपल्याकडील सोनं देऊन नामको बँकेचे हक्काचे सोने तारण कर्ज घ्यायचे, तेही एका तासात.
1: व्याजदर 8.9% आणि शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर 8.5%.
0: मुदत 1 वर्ष. आजच आपल्या नामको बँक शाखेला भेट द्या. नियम व अटी लागू.
2: नमस्कार, मी प्रमोद पुराणिक, गुंतवणूक सल्लागार. रेडिओ विश्वासच्या सहकार्याने आपण गेली अनेक वर्ष नाशिक परिसरामध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. आणि त्या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी दुपारी 12:30 आणि रात्री 8:30 विश्वास रेडिओवरती आपण हे प्रक्षेपण करत असतो. आणि या प्रक्षेपणाचा हेतू रेडिओ विश्वासच्या श्रोत्यांना, नाशिक परिसरातल्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीविषयी आर्थिक साक्षरता निर्माण होऊन त्यांनी गुंतवणुकीचे चांगले निर्णय घ्यावे आणि त्यातून आपली आर्थिक प्रगती करावी.
3: मधुर लोनावत मॅडम नमस्ते, मैं रेडिओ विश्वास के तरफ से आपका नासिक में स्वागत करता हूँ. और हमारा जो कम्युनिटी रेडिओ है वो हर एक मंगलवार के दिन 10 मिनट के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस का प्रोग्राम दोपहर को 12:30 और रात को 8:30 होता है. तो आज आप हमारे लिए, हमारे नासिक के निवेशकों के लिए, और आप जो नई स्कीम लेके आए उसके बारे में, और आपकी AMC नहीं है तो उनके बारे में हमारे नासिक के निवेशक, रेडियो विश्वास के जो श्रोता है उनके लिए, और नासिक के जो अलग अलग इन्वेस्टर है उनके लिए आप ये 10 मिनट का अच्छा तरह यूज़ कर सकते हैं.
4: जी जी, बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. सो आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम मधु लोनावत है. मैं बाय क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वैसे राजस्थान से हूँ, बट बॉर्न ब्रॉट अप गुवाहाटी आसाम से हैं हम. और मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में नौकरी की पहले, और नौकरी करने के बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया 2014 से. सो हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल्टरनेट एसेट एडवाइजरी, यू नो, उन सब में हैं हम लोग. और हमने रिसेंटली दीना मैम, जो BSC की महिला, पहली महिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनकी सारे बिजनेसेस भी हमने एक्वायर किए. एंड सो बात करते हैं AMC में. सो AMC लाइसेंस हमें सर पिछले साल मिला, एंड विच इज़ वेयर मैं भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने AMC लाइसेंस हासिल किया. तो बात करते हैं, ये जो अभी NFO आ रहा है सर, ये अपना मल्टी एसेट NFO है, जहाँ पे जैसा आप देखते हैं कि जहाँ पे मल्टी एसेट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों कैप्स में हम इन्वेस्ट करते हैं. लार्ज कैप 25%, मिड कैप 25%,

0: स्मॉल कैप तो एक एसेट एलोकेशन की जो हम बात करते हैं, मल्टी कैप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको तीनों कैप में डाइवर्सिफिकेशन देता है और प्लस फंड मैनेजर के पास कुछ परसेंटेज और रहते हैं, ये 75% 25 25 25 प्लस 25% का और उसके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि जहां भी उसको अच्छा लगे, जिस कैप में भी उसको अपॉर्चुनिटी लगे वेल्थ क्रिएट करने के लिए वो लगा सकता है। सो ये अपना NFO अभी 27 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 10 सितंबर को फिनिश होगा। दूसरी बात करते हैं नासिक की। सो नासिक एक बहुत ही प्यारी सिटी है सर, और हमेशा जब भी आती हूँ बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला है। तो आज हमने एक बहुत बढ़िया नासिक के लिए फर्स्ट टाइम हुआ था, हमने यहाँ के फीमेल्स के लिए, फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो फीमेल नई MFDs बनना चाहती हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में आना चाहती हैं, उनके लिए हमने आज एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया कि उनको कैसे बिजनेस में आना चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ कैसे करनी चाहिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। उसके बाद शाम को भी हमने नासिक के जो प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ा और प्रोग्राम किया, जहाँ पे हमने ये बात की कि सर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है इन्वेस्टरों का वेल्थ क्रिएट किया जाए, राइट। इन्वेस्टरों का वेल्थ क्रिएट करने के लिए 3-4 इजी चीजें बात करते हैं। पहला तो इन्वेस्टर के लिए मेरा एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा आप सभी इन्वेस्टरों को कि आपको फोकस करना चाहिए पैसा कमाने में, और पैसा जो आपका पैसा है उसको मैनेज करने की जो जिम्मेवारी है वो आपके जो लोकल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे आप छोड़ दें अपनी ये जिम्मेवारी, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप म्यूचुअल फंड बिजनेस में आते हैं तो मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि मधु LIC क्यों नहीं, ये मधु FD क्यों नहीं, बट अगर सर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बात करो और आप लास्ट 60 ईयर्स की हिस्ट्री देखो, राइट, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने करोड़ों लोगों को वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प मदद की है। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड बिकॉज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, उतार चढ़ाव बिल्कुल आएंगे, बट उतार चढ़ाव अगर नहीं होगा सर तो वेल्थ क्रिएट होने वाली नहीं है। तो जब हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि यार इसने रिटर्न अच्छा बना लिया, इसने वेल्थ अच्छा बना लिया, बट ये पीछे लोग ये नहीं सोचते कि उस आदमी या औरत ने 12 से 15 साल अपने एसेट पे टॉपअप किया है, अपने एसेट को कंटिन्यू रखा है और रोज रोज उसको रिडेम्पशन नहीं मारा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम सबकी सर बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हमने एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं सर्व इच्छा पूर्ति। तो आपके कोई भी इन्वेस्टर की जितनी भी इच्छाएं हैं, 10 इच्छाएं हैं, 5 इच्छाएं, आप प्लीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और उनसे अपनी इच्छाओं के बारे में बताइए, और आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका एसेट एलोकेशन करेगा आपके एज के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और उसके बाद हर इच्छा के साथ वो एक लमसम और SIP करेगा। और लेट मी टेल यू, म्यूचुअल फंड के अलावा देर इज नो अदर इंस्ट्रूमेंट जो आप बढ़िया से आपके सारे जो गोल्स है, आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सके। एंड ये बहुत ये सभी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप देखोगे जब हम Tier 3 Tier 4 में बात करते हैं तो वहाँ पे चिट फंड हो गया, हुंडी हो गया, ऐसे से बहुत सारे मिस नॉमर्स है कि लोग सोचते हैं हमें वहाँ पैसे लगाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप ये मत देखिए कि मार्केट रिस्क है इसमें, डेफिनेटली मार्केट रिस्क है, बट मार्केट रिस्क के साथ साथ रिटर्न पोटेंशियल भी इसी इंस्ट्रूमेंट पे सबसे ज्यादा है। तो आप FD और बाकी तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट ना करके इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, और जहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग टर्म में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन भी करें तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। एक 10,000 की SIP 15 साल में सर लगभग 85 लाख से 1 करोड़ बन सकती है। और मैं सबको मेरे मम्मी का एग्जाम्पल देती हूँ सर। मेरे मम्मी बिलोंग करते थे लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, तो हमने कभी SIPs के बारे में ना सुना था, पैसे भी नहीं थे। तो अब जब से मुझे समझ में आई, मैंने मेरी मम्मी की SIP करवाई और अभी कॉर्पस बनाया, और आज उनको SWP करवाती हूँ जिससे उनको हर महीने 40,000 मिलते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको अपनी बेटी या बेटे किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड के अच्छा कोई तरीका नहीं है। और इस वजह से मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कीजिए, और समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। प्रॉब्लम क्या है सर, हम इन्वेस्ट करते हैं और 1-2 साल में हम बोलते हैं रिटर्न नहीं आया, 2 साल में, 2.5 साल में रिटर्न नहीं आया। सर रिटर्न बिल्कुल आएगा, बट उस इन्वेस्टमेंट को आप एटलीस्ट 10 से 15 साल दीजिए।
1: नासिक में अभी भी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं, वो फाइनेंशियल एसेट के बदले लैंड, रियल एस्टेट, शॉप्स, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनको म्यूचुअल फंड में आने लाने के लिए क्या करना चाहिए?
0: तो इसमें हमें जो हम एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो पुरानी सर आप इतना करते रहते हैं, राइट, वो इन्वेस्टर प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम ये सब बातें खुल के डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। आप रियल एस्टेट का लास्ट 100 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि जो चीज जैसे रियल एस्टेट है तो हम उसको 3 जनरेशन तक बेचना नहीं चाहते। गोल्ड ज्वेलरी जो हमें कोई ब्याज नहीं देती वो हम लॉकर में जमा करके रख, बट यही चीज जब म्यूचुअल फंड पे आते हैं सर तो हम म्यूचुअल फंड में सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें डेटा पे जाना चाहिए और लास्ट आप 60 इयर्स का डेटा उठा के देखिए, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो या चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, म्यूचुअल फंड ने हमेशा बढ़िया से अच्छा, इन सब से कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न दिया है। और उसी से लोगों का, आज जैसे हम प्रोग्राम में सर बात कर रहे थे कि एक MFD ने 100 लोगों को करोड़पति बनाया, आपने कितने को बनाया है?
1: मैं तो पूरे नासिक को बनाया।
0: बताइए सारे नासिक को आप 40 साल से करोड़पति बना रहे हो आप, राइट? तो इससे बड़ा सर हमें तो देखना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए कि हमारे से पहले जो लोग कर चुके हैं हमें क्यों उस चीज को ना वापस से री इन्वेंट करना है। तो सर ये क्या ये साइकोलॉजिकल इशू है जिसमें हमें लगता है कि लैंड हमें दिख रहा है तो वो उसकी वो मतलब वो सेफ एसेट है, राइट? हमें गोल्ड दिख रहा है तो हम गोल्ड में दिन रात इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो मैं इसलिए इन दोनों में इन्वेस्ट ना करके। और हमने ये देखा सर जो जेंजी हैं जो नए लोग हैं वो लोग में लैंड और गोल्ड के प्रति उनकी रुझान कम हो रहा है और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड और बाकी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करने लग गए। तो सर गोल्ड की जब हम बात कर रहे थे, एक मैं आपको बताती हूँ भारत ये है आपकी जो महिलाएं श्रोता हैं उनके लिए पॉइंट है कि महिलाएं ज्वेलर्स के यहाँ जाके सर SIP करती हैं, राइट? उनकी जो पास स्कीम होती है ज्वेलर्स इन्वेस्टमेंट स्कीम वहाँ इन्वेस्ट करती है। और सर उसमें आप सोचिए उसमें आपको नंबर वन इसलिए कर पाती है क्योंकि वो ज्वेलर के यहाँ जाके उनको ये होता है कि आप ज्वेलरी खरीद सकती हैं। बट सर यही चीज़ आप गोल्ड FOF में जब आप करते हो आपको प्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। एंड नंबर 3 जब आपको क्यों 1 साल बाद ज्वेलरी लेनी है जहाँ पे इतनी सारी मेकिंग चार्जेस है, आप उसको इन्वेस्टमेंट तरीके से कीजिए। सर पुराने जमाने में होता था कि हम ना ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं, वेयरिंग ज्वेलरी अलग होती थी, इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी अलग होती थी, इन्वेस्टमेंट के लिए हम हमेशा बार्स या कॉइन्स यूज करते थे। आज क्या है वो भ्रम हो गया लोगों को कि ज्वेलरी जो हम पहनते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। लोगों को पता नहीं कि 25-30% तो उसमें प्योरिटी नहीं होती, फिर मेकिंग चार्जेस इतने होते हैं, राइट? तो आप देखोगे हमने क्या किया, गोल्ड पासबुक निकाला है सर जहाँ पे उनको ग्राम्स दिखते हैं। सो आपके चैनल के थ्रू मैं श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगी कि गोल्ड FOF में SIP करें वो।
1: जरूर जरूर। और हमारे निवेशकों के लिए हमारे तरफ से ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि जब भी आप नासिक आएंगे तब हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और ये इंडस्ट्री में जो चेंजेस हो रहे हैं, नए नए स्कीम आ रहे हैं, अभी एक लाइफ साइकिल फंड लेके आ रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो इसमें अगर हमेशा आप अच्छी तरह से हमें कुछ ज्ञान देंगे हमारे नासिक के लोगों के लिए तो नासिक में म्यूचुअल फंड का निवेश और बढ़ सकता है। आपने इतना व्यस्त समय होते हुए भी रेडियो विश्वास के लिए आपने ये टाइम दिया, उसके लिए रेडियो विश्वास और नासिक के जो निवेशक है उनके तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि जब भी आप नासिक आएंगे कुछ फंक्शन के लिए तो रेडियो विश्वास के लिए आप थोड़ा बहुत समय निकालेंगे, ऐसे मनोकामना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद।
2: तुमचं बिल या वस्तू कानातले
3: पहिल्या पगारातून आईसाठी
2: संधीची पळी
3: बाबांना पूजेसाठी
2: मजुरीत 30% सूट आहे बघून घ्या, हमखास गिफ्ट हे घ्या शुद्ध चांदीचं बेलचं पान
3: आजीला हवंच होतं आता राखी पौर्णिमेला दादाला बघू,
2: आणखी एक 24 कॅरेटचं सोन्याचं बेलचं पान किंवा सोन्याची राखी जिंकण्याची हमखास संधी सुद्धा आहे।
3: अडावतकरांकडे सगळंच साधलं गेलं, ऑफर कालावधी मर्यादित, अडावतकर ज्वेलर्स अग्रो कॉम्प्लेक्स कॅनडा कॉर्नर।
4: यानंतर संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: विश्वास टाइम चेक टाइम चेक
1: रात्रीचे 10 वाजले आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 FM. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
2: This hour is brought to you by
3: Sony Gifts, exclusive range of crockery, appliances and presentation articles. Sony Gifts, Shalimar.
2: This hour is brought to you by
4: Vishwas Cooperative Bank.
1: Sanchayat Samruddhi.
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
6: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही. त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा. रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज.
7: दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे कुछ खास गीत. दोस्तों, अफसाना नहीं, ये तो हकीकत है कि हम और आप एक ही नया के मुसाफिर हैं और इस सफर में बस सुर है, ताल है. दोस्तों, रेडियो विश्वास ने मिलाया यह मेल है. इन पुराने सुहाने भूले बिसरे गीतों का नजराना लेकर मैं आई हूँ आपके लिए. आपने ट्यून किया है 90.8. आज के प्रोग्राम में सुनेंगे हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार इंदिवर के लिखे हुए कुछ बेजोड़ नगमे.

दोस्त दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। ये बेजोड़ नगमा लिखा था इंदिवर ने, जो भारत के प्रसिद्ध गीतकारों में से जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित बरुआ सागर कस्बे में हुआ। एक निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम श्यामलाल बाबू राय था। इनके बचपन में एक फक्कड़ बाबा से इनकी मुलाकात हुई, जो अच्छा गाते थे। इनके संपर्क में श्यामलाल माने इंदिवर जी को गीत लिखने की रुचि जागृत हुई।

दिल पुकारा में अभी आपने फिल्म अनोखी रात का गीत सुना, लता मंगेशकर ने गाया था, संगीत से सजाया था रोशन ने, लिखा था इंदौर ने। दोस्तों इन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं आज के दिल पुकारा में। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ, आपने ट्यून किया है 90.8। इंदौर के बाल सखा राम सेवक रिछारिया ने उन्हें राष्ट्रीय विचारधारा और सुधार की दृष्टि से साहित्य की ओर मोड़ा। वे उनकी रचनाओं को सुधारते रहे। एक बार कालपी के विद्यार्थी सम्मेलन में श्यामलाल ने मंच पर कविता पाठ किया तो श्रोताओं द्वारा उन्हें काफी सराहा गया और उन्हें बड़े कवियों की भांति विदाई के समय 51 रुपए की भेंट भी प्राप्त हुई। तब उन्होंने उन रुपयों में से 36 रुपयों में साइकिल खरीदी, सम्मेलन में जाने के योग्य अचकन और पजामा खरीदा। फिर भी जेब में काफी रुपए बच गए थे क्योंकि उन दिनों 1 रुपए की भी कीमत बहुत थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेते हुए उन्होंने श्यामलाल बाबू आजाद इस नाम से कई देशभक्ति गीत लिखे।

0: तुमने जवाब नहीं दिया।
1: यकीन नहीं आया
0: रेशमा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी में इतनी कमी का एहसास कभी नहीं हुआ। हां कह दो रेशमा, हां कह दो।

दोस्तों अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का गीत। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और ये गीत लिखा था इंदिवर जी ने। दोस्तों इन्हीं के जादू भरे गीत आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर। आपने ट्यून किया है 90.8। इंदिवर के गीत बड़े पसंद किए गए। धर्मात्मा, अनोखी रात, सरस्वती चंद्र, पारसमणि, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, सफर अमानुष, इन सारी फिल्मों के सारे ही गीत हम और आप जैसे संगीत प्रेमियों की दिल में बसे हैं। और भी एक फिल्म है जिसका नाम है दिल ने पुकारा। दोस्तों यही तो नाम है हमारे प्रोग्राम का।

सरस्वती चंद्र फिल्म से गीत आपने सुना, इंदौर का लिखा संगीतकार थे कल्याण जानन जी और गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों आज भी बड़ी शिद्दत और एहसास के साथ उनके गीत सुने और गाए जाते हैं जैसे वह पहले गाए और सुने जाते थे। इंदौर ने चार दशकों में लगभग 1000 गीत लिखे जिनमें से कई यादगार फिल्मों की सुपर डुपर सफलता के कारण बने। जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर शायर और गीतकार इंदौर का जीवन के प्रति नजरिया उनकी लिखी हुई इन पंक्तियों से समझता है, इन पंक्तियों में समाया गया है। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना।

तो दोस्तों, इंसान को हंसाने के लिए, गम मिटाने के लिए इन गीतकार संगीतकारों का हमारे जीवन में जो योगदान है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। म्यूजिक इज अ पेन किलर, गमों की दवा है, दर्द पर मरहम है ये मौसिकी। तो चलिए सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे ये प्यारे से गीत, और अगले मंगलवार जरूर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल ने पुकारा। नमस्कार।

0: सुन ली उसकी धड़कन मैंने और समझ गई सब बात।
1: फिर बोलना, अरे बोलना क्या हुआ
0: फिर?

0: मेरी सूरत के तलबगार मगर क्या जाने
1: कि मेरा माराम हुआ दुनिया में ना पानी मांगे।
2: वाह

0: अरे मामा, तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: है? भांजा आ रहा है? अब क्या होगा? देवियों, भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।

0: एफडी करायची आहे, मग निवडा विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक. 7 दिवसापासून 18 महिने आणि त्यापुढील कालावधीसाठी एफडी सुविधा. व्याजदर 3% ते 7.25% ज्येष्ठ नागरिक आणि रुपये 15 लाखावरील ठेवींना अतिरिक्त 0.50% व्याज आणि खास 499 दिवसांची स्पेशल एफडी योजना 7.75% व्याजदरासह. तेव्हा आजच भेट द्या आपल्या जवळच्या विश्वास बँक शाखेला. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9130002088. विश्वास बँक, विश्वासाचे नाते.
1: नीली आंखें देवानंद की चाल, धर्मेंद्र का मर्दानापन और दिलीप से बाल, संजय का छेल छबीला, शशि सा शर्मीला और मनोज सा भोला भाला, शम्मी सा रंगीला, शौक हो वो राजेंद्र जैसा और सुनील सा बांका, जिसमें इतने गुण हो सकेरी जोड़ उसी से टांका. ना बंगला ना मोटर मांगू, ना कपड़ा ना गहना, ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना.
2: कमर हेलन की, आंखें पद्मनी की, गाल विन्नी के, अदा आशा की, शोखी साधना की, बाल सिन्नी के, नूतन का कद, शर्मीला की अंगड़ाई, बबीता की जवानी और नंदा की सिरहनाई, वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती, अदा में, नाद में, नखरे में हेमा मालिनी जैसी, नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए, अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार हो जाए.

0: अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप छूट जाता है। कहना अनुराधा,
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं बिंदू बिंदू,
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
3: क्या